0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून. टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4. रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.
2: नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपले शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं. आयुष्यामध्ये पुढे जात असताना ते एका अशा यशाच्या टप्प्यावर उभे असतात की त्यांचा हा जो प्रवास असतो तो आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतो, आणि म्हणूनच आपण अशा सर्व प्रेरणादायक व्यक्तित्वांच्या मुलाखती ज्या आहेत ते तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ऐकत असतो. आजही आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे उमरान शेख यांना. ते 2019 मेकॅनिकल या ब्रँचमधून तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील पासआउट आहेत. त्यांचं शालेय शिक्षण छत्रपती हायस्कूल धाराशिव इथेच झालेलं आहे, आणि त्यांचं पॉलिटेक्निक पण झालेलं आहे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक धाराशिवमधून. आणि सध्या ते म्हणजे 2020 आजवळपास 5 वर्ष झाले ते अलियन्स टेक्नॉलॉजी ही जर्मन बेस्ड कंपनी आहे त्याच्या पुण्याच्या ब्रँचमध्ये ते कार्यरत आहेत. तेव्हा आपण जाणून घेणार आहोत की त्यांचा हा प्रवास कसा राहिलेला आहे. उमरान भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडियो तेरणा के स्टूडियो में.
3: थैंक यू सर.
2: अच्छा, तो उमरान जी, वैसे तो हमने नाम हमेशा इमरान ऐसा लिया है कभी भी हमारे सामने जितने भी इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन ये उमरान शेख, तो उमरान क्या क्या मतलब होता है? वैसे
3: उमरान का नाम है सर, एक हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे उनका नाम भी ये था उमरान. उसी से प्रेरित होकर मेरे घर वालों ने मेरा नाम उमरान रखा है.
2: अच्छा,
3: उमरान तो हम देखते हैं इमरान जैसे बहुत
2: कॉमन,
3: बहुत ज्यादा
2: बहुत
3: ज्यादा कॉमन नाम है.
2: हाँ, हाँ.
3: पर जैसे जैसे होता है हर एक का ख्वाहिश की जैसे एक यूनिक नाम होना चाहिए अपने बच्चे का, तो उसी के लिए मेरे घर वालों ने सोचा जैसे इमरान हम सुनते हैं उमरान, ये बहुत डिफरेंट नाम.
2: अच्छा,
3: जैसे हम उमरान के बारे में देखते हैं कि बहुत कम सुना है, और अभी कुछ सालों पहले उमरान मलिक जैसे हमारे बॉलर आए थे हैदराबाद टीम में.
2: अच्छा,
3: वहाँ से भी नाम ज्यादा फेमस हो गया.
2: अच्छा, ये उमरान नाम,
3: उमरान
2: बॉलर का नाम,
3: आईपीएल टीम हैदराबाद टीम के लिए वो खेलते हैं.
2: अच्छा अच्छा, तो 2019 में आपका इंजीनियरिंग यहाँ से कम्प्लीट हो
3: गया. यस, तेरना कॉलेज से मेरा इंजीनियरिंग.
2: तो अभी लगभग 6 साल हो रहे.
3: यस,
2: तो ये 6 सालों में आप मतलब पहली बार यहाँ पे तेरना के कैंपस में आए कैसे?
3: नहीं, मैं उसके बाद भी बहुत सारे बार यहाँ पे कैंपस पे विजिट कर रहा हूँ. मैं रेगुलरली माने सर, सर शेख सर, रफीक सर के लिए उनको मिलने के लिए आता हूँ. अभी भी मैं बहुत से बार गाइडेंस के लिए कुछ पूछने के लिए आता हूँ, और हमारे जो फैकल्टी है तैरना वाली वो अभी भी बहुत सारे इसमें हमको सपोर्ट करती है.
2: अच्छा अच्छा, तो उमरान जी आप देखिए ना, आप 2019 को आपने तैरना से पास आउट किया था, उसके पहले भी आपका छत्रपति से और पॉलिटेक्निक से ये था. तो आपको मतलब बचपन से ऐसा कुछ था कि आपको इंजीनियरिंग ही कम्प्लीट करना है, ऐसा कुछ ऐसा था?
3: जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा घर वालों को बोलता था कि मुझे पायलट बनना है. पायलट का मेरा बहुत ज्यादा एक ख्वाहिश था कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा. पर जैसे जैसे मैं आगे आया, और जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं बहुत सारे फिल्मों में कि एक व्हाइट कॉलर जॉब, जैसे वो डेस्क पे बैठ के जॉब करते हैं, तो वो देख देख के बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि एक एसी कैबिन में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करना वो मुझे आसान लगता था, ऐसे समझ में आता था.
2: अच्छा, अच्छा.
3: तो मैं उसी की तरफ मैं जाने के लिए बाद में सोचने लगा कि

0: क्या होगा क्या होगा।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैं उस जब मैंने देखा या मैंने जब उसके बारे में जानकारी ली तो मुझे पता चला कि जैसे इंजीनियरिंग अगर हम करेंगे तो उस फील्ड में हमको जॉब लग सकती है, मोस्टली इंजीनियरिंग।
1: अच्छा, लेकिन आपके तो मैकेनिकल ब्रांच हो चुकी है। मैकेनिकल में तो ज्यादा तो लोग वो कंपनी में एक तो असाइनमेंट में या इंजन फिटिंग में ऐसा कुछ तो रहता। तो
0: यस यस, मैकेनिकल में जब हम देखते थे, एक्चुअली मेरा भाई यहाँ पे सीनियर था इंजीनियर तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो जब ड्राइंग शीट्स उतारता था उसके जो हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंस पार्ट्स के ड्राइंग बनाने होते, तो उस टाइम में शायद 9th या 10th में था होगा, और जब वो शीट्स बनाता था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये तो बहुत अच्छा है कि ये शीट्स बनाते हैं, लैपटॉप पे कुछ डिजाइनिंग करते हैं। तो मेरा वो था कि मैकेनिकल डिजाइन में मुझे ज्यादा अंदर जाना है, इसलिए मैंने मैकेनिकल चुना था उस टाइम।
1: आपने पायलट की भी बात छेड़ दी थी, तो धाराशिव का ही अजहर शेख जो है वो पायलट बन चुका है, उसका इंटरव्यू किया था आकाशवाणी के लिए।
0: वो हमारा फैमिली फ्रेंड ही है।
1: अच्छा,
0: उसके बारे में भी
1: उसका भी ड्रीम ऐसे ही था, बचपन से ऐसे ही था कि उसको पायलट बनना था, तो वो पायलट बन भी गया।
0: अच्छा,
1: तो जैसे आपने फिर बचपन से सोचा हुआ था, जैसे आपको एक इंस्पिरेशन भी था, आपका भाई यहाँ पे पढ़ा हुआ था वो भी इंजीनियर है, तो जैसे आपने पॉलिटेक्निक को एडमिशन लिया है स्कूल से, तो ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था कि मैकेनिकल ही चूज करना है, ऐसा कुछ था?
0: यस, एक्चुअली मेरा जब भाई मैकेनिकल में था तो मैं यही सोच रहा था कि मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब ज्यादा लगेसी आगे लेके चलना है। और उसमें क्या था कि जैसे ज्यादा पढ़ाई नहीं कि तुम डिजाइन की तरफ देखो, डिजाइन भी है उसमें, ठीक है पढ़ाई भी है बट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और जब हम देखेंगे मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है कि उसके बच्चे तुमको हर जगह दिखेंगे, जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर भी रहेगा या हर फील्ड में मिलेगा।
1: जैसे इंजीनियरिंग तो जुगाड़ू है, इसलिए कौन सा भी इंजीनियर हो
0: कहीं पे भी जाता है।
1: तो ये आपकी जो स्कूल की पढ़ाई हो गई वो छत्रपति स्कूल में हो गई, तो ये कैसे स्कूल की जर्नी कैसे रही है पहले बोलिए।
0: स्कूल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी, जैसे मैं हमारे घर के पास ही वो स्कूल था, इसलिए मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर है वो।
1: अच्छा,
0: भी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जैसे डाल दिया पहले स्कूल में, तो वहाँ पे मेरा स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था, मतलब मैं शरारती बच्चों में भी था लेकिन पढ़ाई में भी आगे था, ऐसे कभी फेल नहीं हुआ।
1: पुलिस बॉयज बोले तो मैं खुद पुलिस बॉयज हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पुलिस बॉयज बोले थोड़ा सा एग्रेसिव
0: रहते थे, तो शरारतों में भी आगे थे क्लास के, जैसे हम पर हमेशा टॉप में भी रहता था मैं, तो हमारे सर वही बोलते थे कि तेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो छोड़ दे।
1: अच्छा,
0: और तू होशियार है, तू पढ़ेगा अच्छा, ऐसे वैसे बोलकर। बट जैसे फ्रेंड रहते ये फ्रेंड को कौन छोड़ सकता है, तो वही फ्रेंड के साथ हंसी मजाक में पढ़ते गए और बहुत अच्छा 10th में भी हमारा रिजल्ट आया। तो फिर उस टाइम पे ना जब डिप्लोमा गवर्नमेंट में भी नंबर लगने के लिए 10th में आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते थे, जैसे मैकेनिकल में मोस्टली जल्दी नंबर नहीं लगते थे।
1: अच्छा, तो 2019 में आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, उसके
0: पहले तीन साल पहले
1: 2016
0: में मेरा एडमिशन वहाँ करने की प्रोसेस थी, तो उस टाइम भी मतलब बहुत ज्यादा मेरिट लगता था उसके लिए। तो बट जैसे कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा लग गया उसके अंदर मैकेनिकल में, मैं वही चाह रहा था कि, और उस टाइम मैकेनिकल ब्रांच के लिए ज्यादा कॉम्पिटिशन था। उस टाइम ऐसे नहीं था कि आईटी ब्रांच ऐसी है, किसी को मालूम भी नहीं था, जैसे हम ज्यादा सोचते ना हमारे जगह पे कि आईटी ब्रांच ऐसी है, आईटी में एडमिशन लेना है, तो कंप्यूटर इसमें ब्रांच में कम होते थे, पर मैकेनिकल को सब लोग ज्यादा प्रेफर करते थे उस टाइम।
1: कोर ब्रांच है और मैकेनिकल में ऐसा कहा भी जाता है कि उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और स्टेबल जॉब मिलती है, आईटी में बहुत ज्यादा होलाटाइल अप एंड डाउन आते जाते हैं। तो अच्छा, तो ये जैसे 10th खत्म हो गया, तो ऐसे कोई मतलब दिमाग में नहीं चल रहा था कि अपन 11th 12th करेंगे या उसके बाद में कुछ और अलग फील्ड में जाएंगे, जैसे कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग तो खैर हो गया आपका, लेकिन
0: मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि 11th 12th कर ले, उसके बाद भी तू इंजीनियरिंग जा सकता है। बट जितना मैंने सुना था और जितना मैं जैसे रिसर्च कर ही रहा था, तो उसमें मुझे समझ आया अगर हम डिप्लोमा करके जाएंगे तो हमारा बेस इंजीनियरिंग का पहले ही पक्का हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स भी है वो आगे चल के सेम सब्जेक्ट है बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो अगर हमारा इंजीनियरिंग में अगर बेस हमको, अगर हमारा ये स्ट्रेट पाथ है कि हमको इंजीनियरिंग ही करना है, तो ये बहुत ईजी स्टेप है कि आप डिप्लोमा करो, डिप्लोमा करके यहाँ आओ, क्योंकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे हम अगर 11th 12th साइंस से करेंगे तो उसमें हमको थोड़ा बायोलॉजी ये वो भी आते हैं, पर अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको ठीक है इंजीनियरिंग ही करना है, तो बेस्ट वे यही मैं मानता हूँ कि आप डिप्लोमा करो, वहाँ पे आपके मेनली जो बेसिक जितने कंसेप्ट है वो क्लियर करो और फिर यहाँ इंजीनियरिंग में आओ, तो आपका 50% एडवांटेज आपको मिल जाएगा वहाँ पे मोस्टली इंजीनियरिंग।
1: तो जिनको इंजीनियरिंग में करियर करना है तो उनके लिए एक बेटरमेंट है कि अगर आप आईआईटी के और बाकी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आप सीधा पॉलिटेक्निक में। अच्छा, तो मित्रों आपन जी चर्चा करत आहोत श्री उमरान शेख सोबत 2019 मेकॅनिकल ब्रांच मधून तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे पास आउट आहेत। सध्या अलियांज टेक्नॉलॉजी या जर्मन बेस्ड कंपनीमध्ये ते 2020 पासून कार्यरत आहेत। तो आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद, जैसे 2016 में आपकी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गई होगी, तो आपको तो फिर कहीं जॉब के लिए जाना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा था कहीं तो पूना बॉम्बे में जाके वहां पे पढ़ना चाहिए या कुछ अलग सिटी का, ऐसा कुछ
0: नहीं? मेरा विजन
1: अट्रैक्शन
0: तो,
1: ऐसा नहीं था कुछ?
0: यस यस, मेरा विजन तो यही क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग तो करनी ही है, कुछ भी हो जाए मुझे इंजीनियरिंग करनी है। उस वजह से मैं जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो मैं सीधे यहाँ पे एडमिशन का आगे मेरा माइंड।
1: तैरना ही क्यों आपने सोचा, क्योंकि बाहर जाने का नहीं सोचा क्या आपने?
0: एक्चुअली तैरना कॉलेज जब हम देखते हैं ना, तैरना कॉलेज हम हमेशा पहले से ही सुनते आते हैं तैरना कॉलेज बारे में, बहुत एक पहले से चलता हुआ आ रहा है कॉलेज, और तैरना कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में मैंने बहुत सुना है। और जैसे मैंने बताया, मेरे और भी यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ये लोग यहाँ पे ही थे, तो मुझे इजीली भी बाहर पुणे में वगैरह मिल रहे थे। बट जब मैंने यहाँ के सर से आके बात की, तब उस टाइम हमारे पटेल सर भी थे, पटेल सर ने भी मुझे गाइड किया, और शेख सर थे, उन्होंने भी मुझे गाइड किया। तो जब मैं यहाँ के आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ के लैब्स देखे,
1: लैब्स तो पूरे मराठवाड़ा में नहीं है,
0: नहीं है, यस यस करेक्ट। तो वही मैं देखकर मैं बोला कि, और जब मैंने स्टूडेंट से भी फीडबैक लिया, वो भी वही बोले कि प्रैक्टिकल्स को लेकर और जो अपने लेक्चर्स होते हैं वो सब यहाँ पे 100% कवर होता है। और मेन जब हम मैकेनिकल में देखते हैं, हमको प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजों को देखना है। और जब हमने देखे तो यहाँ पे हर मशीन अवेलेबल है, हर चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए हर चीज अवेलेबल, और फैकल्टी भी बहुत सीनियर फैकल्टी है जिसके आने के लिए हमको, उस सब चीजों को देख कर मैं सोचा कि यहीं पे रह के हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करें।
1: अच्छा अच्छा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 2019 में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए, तो देखिए आपके फीचर 2016 में आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन लिया, तो पहले तो आपके भाई साहब यहाँ पे थे, साथ में आपने छत्रपति स्कूल में पढ़ाई की थी, 50-50 था दोनों तरफ, यानी अच्छे भी और स्टूडेंट में ज्यादा हंसी मजाक भी करने वाला ऐसा, साथ में पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे आने के बाद काफी रिलैक्स होके आए होंगे, चलो आपने अपना ही राज है, अपना ही सब कुछ एरिया, ऐसा कुछ हो गया या कुछ पढ़ाई की तरफ ज्यादा मतलब ध्यान देना पड़ा?
0: नहीं, इस टाइम तो हम यही सोचते थे कि चलो अपना कॉलेज, हम इस कॉलेज को हमेशा बोलते अपना कॉलेज है, अपना कॉलेज है, क्यों तो यहाँ का इन्वायरमेंट हम देखेंगे ना, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कॉलेज का, हम देखेंगे ना हर चीज, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट ज्यादा है या बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली है, वैसे नहीं, एक नॉर्मल जैसे होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, वैसे ऐसे नहीं है कि हम कभी दो बार नहीं सोचते कि हम रफिक्स, अरे अपने सर है उनको कैसे कॉल करें, बहुत से बार होता है अगर हमारे सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो हम सोचते हैं यार पूछूं उनको या नहीं, बट यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम कभी भी पूछ सकते हैं, राइट। और मैं एडमिशन लेने के टाइम भी मैं यही सुना था कि अपना जो फैकल्टी है वो बहुत ज्यादा सीनियर है, और जैसे हम देखेंगे ना बहुत सारे कॉलेज अभी अभी शुरू हुए हैं बाहर के, बट जो तैरना कॉलेज है ना बहुत पहले से हम सुनते आते हैं जहाँ पे, जैसे मैं तो ये तक सुना कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे
1: स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, 40 साल के लेकर से ये तो होने वाला,
0: और पहले एडमिशन भी ऐसे थे कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिल जाते थे, बहुत से बार सुना है।
1: अच्छा, तो जैसे आपने यहाँ पे 2016 को आपने जर्नी स्टार्ट की इंजीनियरिंग की डिग्री की, तो ये 3 साल कैसे रहे 2019 तक के?
0: 3 साल हमारे बहुत बहुत ही बढ़िया गए, जैसे हम बोलते हैं ना, हम सेकंड ईयर में आए फर्स्ट, तो हमारा बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो डिप्लोमा में था हमारी
1: एक साथ
0: सब लोग मोस्टली लोग यहाँ पे आए, और हमारी मतलब क्लास ही ऐसी थी जो सेकंड ईयर डायरेक्ट डिप्लोमा करके आई, तो सब हमारे मोस्टली उसके अंदर फ्रेंड्स भी थे, कुछ बाहर की भी थे, तो अच्छी वाइब, और डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट थे तो हमको मतलब पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर अच्छा था, तो उसकी वजह से भी हमारा बहुत अच्छा, और फैकल्टी जब पढ़ाने आते थे तो उनको भी अच्छा सपोर्ट होता था कि मतलब ये चलो इनका बेस क्लियर है तो इनको हम और एडवांस चीज़ें सिखाएंगे, और जैसे यहाँ पे हमको सेकंड ईयर से ही ना माने सर जब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे वो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस लाते थे, जैसे कि हमको याद है सेकंड ईयर में हमने क्वाड कॉप्टर बोल के आया था, क्वाड कॉप्टर, तो वो उसका कोर्स हमको सर ने सिखाया, हमने खुद मतलब चार चार के स्टूडेंट के बैच रहते थे, वो खुद क्वाड कॉप्टर डिजाइन करके बनाते थे, उसको फ्लाई करते थे यहाँ पे, फिर हर साल मतलब सर वगैरह जो है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए लाते थे यहाँ पे, तो उसके अंदर हमको मतलब बहुत ज्यादा सीखने को अच्छी अच्छी चीजें मिली, है ना। उसके बाद भी हमको याद है कि जैसे मैकेनिकल के लिए ऑटो कैड बहुत जरूरी है, तो ऑटो कैड भी हमारा यहाँ पे ही माने सर ने कंडक्ट करवाया था, बैंगलोर से फैकल्टी आई थी सिखाने के लिए, वो भी 3 डेज का ट्रेनिंग वर्कशॉप चला था, ये सब चीजें यहाँ पे अच्छी चली बहुत सारी।
1: अच्छा, ये 3 सालों में ये सब जर्नी चलते हुए कुछ आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना जारी था क्या, कि जैसे हमको इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है क्या नहीं, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस या कुछ खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होके कुछ करना करने का सोच रहे?
0: जब कभी मुझे ऐसे लगता था करियर के बारे में, मैं तो डायरेक्टली सर को पूछता था कि क्या है, और माने सर हमें हमेशा अश्योरेंस दिलाते थे कि आप बस मन लगाकर पढ़ाई करो, आप जितना मन लगाकर पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे मार्क्स लाओगे

0: पार्टिसिपेट करो, बाकी चीजें हम पे छोड़ दो, और अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो।
1: अच्छा, तो ये 3 सालों के जर्नी में आप जितना सीरियसली बोल रहे हो उतना सीरियसली स्टडी होती थी या कुछ और भी होता था, जैसे स्कूल से चलते आ रहा था बहुत सारा धींगा मस्ती, कुछ ऐसा कुछ चलता था?
0: यस, वो सब चीजें तो चलती ही रहती है। इंजीनियरिंग बॉयज मतलब थोड़े ऐसे खामोश बैठेंगे। तो हमको क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। और यहाँ पे अपना जो अभी जो अपना ये वाला है तेरना के पास टर्फ, तो उस टाइम टर्फ नहीं था, वो बास्केटबॉल बॉस कोर्ट था और उसके बाजू में अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड था। तो जब कभी हमारा फ्री लेक्चर होता था या समझो कुछ कॉलेज टाइम के बाद वहाँ क्रिकेट प्रैक्टिस होती थी, तो हम रात रात तक वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। और वहाँ पर सब लाइट का वगैरह अरेंजमेंट सब था, तो हम लाइट ये खेलते थे। बट जो मेनली हमारा फोकस था कि अरे प्रैक्टिकल कभी मिस नहीं करना है, या जैसे अटेंडेंस जो है 70% से नीचे नहीं आनी चाहिए, ये सब चीजों पे हम भी ध्यान देते थे। और अपना कॉलेज कैंपस भी इतना बड़ा है, वो भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा घूमे हैं पूरा कॉलेज कैंपस।
1: तर मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत आहोत ते उमरान शेख यांच्याशी, 2019 पासआउट आहेत मेकॅनिकल ब्रँचमधून, आणि आता सध्या अलियन्स टेक्नॉलॉजी जर्मन बेस्ड कंपनी आहे त्या ठिकाणी म्हणजे पुण्यामध्ये 2020 जॉबला आहेत। तो ये अलियन्स टेक्नोलॉजी में आपने 2020 में ज्वाइन किया ना, 2019 को पास आउट ऑर्डर, तो डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो गई है, उसके पहले कुछ कोर्सेस या कुछ ऐसा कुछ किया?
0: नहीं, एक्चुअली मैंने कोर्सेस किए थे। बेसिकली मैंने फर्स्ट जैसे मुझे मैं यहाँ से जॉब को लग गया था, तो बाद में कुछ वजह से मतलब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वहाँ से ड्रॉप करके जॉब छोड़कर वापस आ गया। वापस आने के बाद मुझे ऐसे पता लगा कि मतलब आईटीज़ में भी जॉब बहुत ज़्यादा बूम हो रहे हैं उस टाइम पे, तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। तो तब मैंने जब देखना उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे सब में अच्छी फील्ड ये लगी साइबर सिक्योरिटी वाली। जैसे
1: आप साइबर सिक्योरिटी में
0: हूँ मैं, तो साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसके अंदर मैं ज़्यादा रिसर्च करने लगा। क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर मेन कंसर्न रहता है कंपनी का, क्यों तो लाखों करोड़ों का उनका टर्नओवर पूरा जो बिजनेस है, वो उनको अगर उनका डाटा प्राइवेट रखना है तो मेनली है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए सोचा। तो फर्स्ट स्टेप मैंने देखा कि उसके लिए हमको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, तो मैंने CCNA कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि अब ये कोर्स तो सभी लोग करते हैं, हमको बस उससे बेसिक पे नहीं हटना है, तो थोड़ा एडवांस भी जाएंगे उसके आगे। तो मैंने 3 मंथ CCNA किया, 3 मंथ CCSA किया, और CCSA का जो एग्जाम होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है। तब मेरा 97th रैंक आया पूरा ग्लोबल में।
1: अच्छा।
0: तो बहुत सारी कंपनीज का भी मुझे अप्रोच आने लगा, और मैं बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करने भी लगा। उस टाइम जो जैसे CCNA सिस्को का सर्टिफिकेशन होता है, और CCSA चेक पॉइंट का सर्टिफिकेशन होता है, मेरे पास दोनों सर्टिफिकेशन और उसके लाइसेंस आ गए थे। तो उस वजह से फिर मैंने जाना सोचा। फिर जब मैंने रिसर्च किया तो कंपनीज का वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जब मैंने किया तो अलियंस मुझे बेटर कंपनी लगी बाकी कंपनियों के हिसाब से, तो मैं फिर वहाँ पे ज्वाइन हो गया।
1: अच्छा, तो ये जो आपने अलियंस टेक्नोलॉजी में आपने जो भी ज्वाइनिंग किया, तो ये साइबर सिक्योरिटी यानी आपका मतलब जॉब प्रोफाइल क्या रहता है? आप काम क्या करते हो? जैसे कि आप मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, तो आप काम क्या करते हो?
0: अच्छा, हमारा मेनली काम है जैसे हमारे बहुत सारे डाटा सेंटर्स है, अराउंड 20+ कंट्रीज में हमारे डाटा सेंटर अवेलेबल है। तो अलियंस मेनली एक ग्रुप है, अलियंस सर्विसेज, एंड उनका एक ये है अलियंस टेक्नोलॉजी। तो अलियंस टेक्नोलॉजी मेनली क्या करती है कि जितने सारे उनके जो बिजनेसेस है उनका डाटा प्राइवेसी, फिर ऐप डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने होते हैं वो मैनेज करना होता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें हमारा जो है, अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ सीनियर एनालिस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं नेटवर्किंग में जितने भी हमारे सर्वर्स है उसका एक्सेस हमारे पास होता है। ओके। और उन सर्वर्स पे मोस्टली डाटा रहता है, जो डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स का भी डाटा है, हमारे कंपनीज का भी डाटा है, तो उनको एक्सेस कौन कर सके? जैसे समझो एक पर्सन है, उसको वो डाटा एक्सेस करना है, पर वो ऑथोराइज है या नहीं है वो देखना है। तो एक सर्वर और एक यूजर के बीच में एक होता है फायरवॉल, तो वो फायरवॉल हम है।
1: अच्छा।
0: हम उसको अब किसको अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है ये हमारे ऊपर है।
1: अच्छा।
0: जैसे अगर हम देखें तो जब कोई यूजर होता है वो हमारे पास एक FCC रहता है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन चेंज बोल के एक हमारे पास आता है। उसके अंदर जैसे यूजर का IP एड्रेस रहेगा, वो यूजुअली कंप्यूटर से ही कर रहा है एक्सेस, तो उसका IP एड्रेस है, तो उसको अलाउ करना है फायरवॉल के आगे या डिनाई करना है वो डाटा जो है, एक स्पेसिफिक डाटा वो यूजर मांग रहा है, तो वो हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन, ये मेनली हमारा उसमें काम है।
1: अच्छा अच्छा, तो ये जो आजकल UPI के जरिए जो पेमेंट होता है उसके अंदर भी बहुत सारा ऐसा फ्रॉड होता है, तो शायद आपका ये फील्ड नहीं होगा, लेकिन उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो कैसे हो, कैसे हो

0: है और उसके उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा।
1: जब हम देखते हैं यूपीआई में मेनली फ्रॉड अगर हम देखेंगे ना तो मेन फ्रॉड होता है जब हम किसी अनऑथराइज लिंक्स पर क्लिक करते हैं या हमारे
0: जो व्हाट्सएप
1: पे लिंक्स या बोलो आपको प्राइवेट एसएमएस में भी आएगी, कुछ ऐसे आएगी कि जैसे आपको इतना कैशबैक मिला है क्लेम करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो जब हम वो लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो फोन की जो इन्फॉर्मेशन है मेनली मैक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस होता है वो मेनली उनके पास चला जाता है और तब उनके पास मोस्टली जो हमने ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या क्या मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री में हमने जब एक पिन हमारा इंटर किया होता है या कहीं पे हमारा मेल आईडी एंड पासवर्ड डाला हुआ होता है वो ब्राउजिंग कैचे में वगैरह स्टोर होता है। तो उस वजह से वो जो स्कैमर होते हैं उसका एडवांटेज लेते हैं।
0: Yes. अच्छा तो उमरान जी, अब देखिए आपने तो ये साइबर सिक्योरिटी और उसका काफी इजी में बता दिया कि ये यूपीआई फ्रॉड भी कैसे होता है और आपका जॉब प्रोफाइल भी कैसा है, लेकिन आप तो मैकेनिकल में थे, वो डिजाइन में थे या ऐसा है वैसा है, ये सब आप बचपन से देख रहे थे, आपके भाई साहब का भी देख रहे थे, ये सब कुछ होते इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा मैकेनिकल से ऐसा पूरा साइबर सिक्योरिटी में, या जैसे आप बचपन से सोच रहे थे कि मुझे एक टेबल पे एसी में बैठ के एक चैम्बर में बैठ के काम करना है, तो ऐसा कुछ?
1: यस, जब हम देखते हैं तो मैं डिजाइन में बहुत ज्यादा ये था, मुझे डिजाइन में जॉब करना है, डिजाइन में जॉब क्यों? तो डिजाइन में जॉब ऐसा है कि टेबल पे बैठ कर एसी के अंदर काम करना है ऐसा। बट जब मेरा ये हो गया, ऑटोकैड भी जब मैंने कॉलेज से किया था, जब मैं डिजाइन में जॉब देख रहा था तो उस टाइम उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे थे डिजाइन के अंदर। मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था कि डिजाइन की कोई कंपनी मिल जाए, बट मुझे ऐसे कुछ उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिली डिजाइन में। बाकी मुझे प्रोडक्शन में, क्वालिटी में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, पर जो मैं सोच रहा था मेरा विजन की अच्छा अपने को ये चीज चाहिए, अच्छा अपने को ये चीज आपने करना है। और हम ये भी देखते हैं कि मतलब उस जॉब करते टाइम खुश रहना, मतलब मेरा मेंटली मैं वहां पे स्टेबल रहूं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब काम कर रहा हूँ मैं बट मुझे ये काम पसंद नहीं है, है ना। तो उसके वजह से मैंने जो क्वालिटी वाला जॉब था मेरा छोड़ दिया, और फिर जब मैं देख रहा था डिजाइन में ठीक है जॉब नहीं लग रही, तो फिर मैंने सेकंड जैसे मैं जब रिसर्च करा, मैं जब पूछा बहुत सारे लोगों को, तो मुझे समझ आया कि आईटीज में भी ऐसे जॉब होते हैं। जब हम पुणे वगैरह घूमने जाते थे तो हम आईटी पार्क जब देखते थे तो अरे इतनी बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग है और कितना मजा होता होगा, और इम्प्लॉय ऐसे आ रहे हैं एकदम वर्क एनवायरमेंट वहाँ का जब देखे हम तो अच्छा लगा। तो मैं सोचता था कि यार ऐसे कंपनीज में जॉब लगना चाहिए, होना चाहिए, ये कितना सही है ऐसे।
0: अच्छा, तो इसलिए आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा आपका हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर सकते हैं जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट है, ये सब कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं?
1: जब मैं करने का ट्राई कर रहा था, मेरे माइंड में सेकंड थॉट था यही कि अरे मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं जब इंटरव्यू को जाऊंगा तो वो लोग पूछेंगे मुझे कि तुम मैकेनिकल से ऐसे क्यों आए। अच्छा, बट उसमें ये चीज है, अगर आपके पास उतना नॉलेज है कि समझो 5 कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू के लिए और 5 में आप बेस्ट हो कि आपको अच्छा उतना नॉलेज है, तो कंपनी वाले आपको क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, क्योंकि वो चारों से ज्यादा अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज का तो आपको बैकग्राउंड कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या किया है। अगर आप आपका नॉलेज इतना एक्सप्रेस कर रहे हो उनको, कंपनीज को क्या चाहिए, उनको अपने से बस प्रॉफिट निकालना है, राइट, उनका काम होना चाहिए, यही चीज मेनली उनके लिए मैटर करती है। अगर एक चीज, एक बंदा कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आया है और वही काम कर रहा है, और एक मैकेनिकल करके आया और वही काम कर रहा है और उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो ऑब्वियस यही है कि कंपनी वाले बोलेंगे कि ठीक है ये भी वही काम कर रहा है और अच्छा कर रहा है, तो इसको क्यों नहीं हम प्रेफर करें। आज तक मेरे 5-6 साल के करियर में ऐसे कभी मुझे किसी ने पूछा नहीं कि तुम मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो कंपनी में, क्यों? तो बस वो लोग वही देखते हैं कि काम अच्छा काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो जैसे आपने 2019 में पास आउट किया था, 2020 में अलायंस टेक्नोलॉजी में यानी आईटी के तरफ आप गए, तो ऐसा कुछ आपको दिमाग में लगता है कि अरे शायद मैं 2016 से लेकर 2019 के बीच में अगर कुछ ऐसा कर लेता था कि ज्यादा कोर्स आईसी के अंदर, तो हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छी प्रोफाइल हो सकती थी?
1: यस, वो तो बस सही है, अगर हम जितना हर चीज़ पे नॉलेज लेंगे और जितने जल्दी करेंगे, जैसे अगर हमारा गोल सेट हो गया ये करना है, उसके अंदर नॉलेज लेंगे तो उसका डेफिनेटली हमको आगे फायदा दिखता है। बट मेरे जब तक मैं जॉब, मतलब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो उतना मैं जॉब के बारे में मतलब ज़्यादा ये नहीं था। मैं सोचता था कि चलो माने सर ने हमें अश्योरेंस दिया है कि जॉब का करेंगे,
0: अच्छा, तो
1: जहाँ होगा, बट मैं माने सर को यही बोलता था कि हम डिज़ाइन में करना है और उस हिसाब से माने सर, जैसे बहुत सारे जैसे हमारे क्लास के लोग थे वो वही बोलते थे कि डिज़ाइन में ही करना है, और माने सर ने उस हिसाब से, फिर जैसे मैंने बोला ऑटो कैट की एक फैकल्टी बहुत अच्छी आई थी बैंगलोर, उस हिसाब से हमने कोर्सेज भी किए। बट जो वो पीरियड था वो जैसे होता है ना हर चीज़ का कि उस टाइम डिज़ाइन में उतनी वैकेंसी नहीं मिल रहे थे हमको, तो फिर हमने ये सोचा कि फिर ठीक है बाबा चलो दूसरा भी हम देखेंगे।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने ये 2019 से लेके आप 2026 ये 4-5 सालों का ये है, लेकिन हम देखा जाए तो सोशल मीडिया के भी बूम लगभग 2014-15-16 के बाद ही स्टार्ट हो गया था, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, इसका सब चल रहा था। तो स्मार्टफोन तो आप भी यूज़ करते होंगे, तो आपको कितना इसका यूज़ कितना लगा, मिसयूज कितना किया, डिस्ट्रक कितना हो गए, क्या क्या क्या हो गए सोशल मीडिया को लेके या मोबाइल को लेके? हाथ
1: सोशल मीडिया जब हम देखेंगे तो वो फायदेमंद भी उतना है और नुकसान जैसे बोलते हैं उतना ही है। अब हमारे टाइम पे रील्स नहीं थी मेनली, अब अच्छा। आपके जमाने में रील्स आ दिए। अच्छा, रील्स आप एक ओपन करो और स्क्रॉल करते बैठो, घंटों कब चले जाएंगे पता नहीं, बट उस टाइम उतना रील्स का वगैरह नहीं था समझो। तो हम यूज करते थे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक उस टाइम ज्यादा पॉपुलर था और फिर इंस्टाग्राम आया था लास्ट में अगर हम देखेंगे 16-17-18 के टाइम इंस्टाग्राम। तो बट उसमें उस टाइम ऐसे ये नहीं था बस फोटोज देखो ये करो, तो उतना टाइम पास ज्यादा नहीं होता उन चीजों को लेकर। और जैसे पढ़ाई तो है हम रेगुलर, तो कोई मतलब रोज नहीं पढ़ता है ना, ऐसे माइंड रिफ्रेश के लिए हम तो देखते थे हर चीज करते थे। बट जब हमको इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के पहले ना पीएल्स मिलते थे, 10 दिन मिलेंगे 15 दिन, तो उस टाइम का यूटिलाइज हम ज्यादा करते थे कि मतलब जैसे 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन आ गए, 2-2 दिन आ गए, उस हिसाब से अगर स्टडी करेंगे हम बराबर, तो वो सब सही चल रहा था उस टाइम।
0: अच्छा अच्छा,
1: और इतना डिस्ट्रैक्शन समझो जैसे मोबाइल का बोले
0: आज जितना है उतना नहीं था
1: उस टाइम।
0: अच्छा, तो आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जैसे आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, और चाहे वो कंपनी का साइबर सिक्योरिटी का क्यों नहीं हो, आपका प्रोफाइल भी कुछ अलग हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आज जितना भी हमको देखने मिलता है, एआई का है, मेटावर्स का है, एआई के जितने भी आजकल ऐप्स आ रहे हैं उसके अंदर आपने फोटो डालो, कुछ अलग करो, और उसके मिसयूज ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के फोटो के समझो, तो ऐसा कुछ होता है, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? आप इसको रोक तो नहीं सकते हम, क्योंकि इसका जो बोलते हैं ना इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इससे हम बच कैसे सकते, उसको ले कैसे सकते, सोच कैसे सकते, इसके बारे में ये बोले।
1: जैसे सही बोला आपने, जैसे आजकल सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ बढ़ गया है और मेनली लेके फोटोज़ को लेके है ना, आज हम देख रहे हैं एआई पे आप एक फोटो अपलोड करो उसको प्रॉम्प्ट दो कि मुझे ये फोटो ऐसे चाहिए, तो वो बनाकर दे देगा। हाँ, है ना, जितना और वो जो सब चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पे स्टोर भी हो रही होंगी। हाँ, जितना हमको
0: जैसे आप पता सर्वर पे है, काम कर रहे हैं, हाँ,
1: उनके सर्वर पे डेफिनेटली स्टोर होगी। अब यही देखो कि अगर एक साल बाद भी हम अगर जैसे चैट जीपीटी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे जाके तो वो फोटो हमारी वहीं दिखाता है, चाहे हमारी फोटो फोन से डिलीट हो या कहीं से हो, है ना, तो वो उनके सर्वर पे तो स्टोर है। तो इन चीजों का जैसे सोशल मीडिया का बोलो या एआई का बोलो, इसका हम ज्यादा फायदा जिससे उठाते हैं हमको वो करना चाहिए, है ना। जैसे उसका ठीक है, हमको फोटो एडिट करना है तो ठीक है आप करो, बट एक लिमिट तक करो उसका, ज्यादा हर चीज का अगर हम बोलेंगे ना तो
0: एक्स्ट्रा ज्यादा करेंगे,
1: यस एक्स्ट्रा ज्यादा करेंगे तो वो खराब है।
0: अच्छा,
1: और अगर उसका लिमिट में कुछ इस्तेमाल करेंगे ये, तो आजकल में ही मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी कि हमारे टाइम अगर चैट जीटीपी होता तो कितना अच्छा होता, एआई होता तो कितना अच्छा, हम पढ़ाई के लिए बोलो, जैसे आज हम कुछ भी डालते हैं, सर्च करते हैं, हमारे काम के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आती है, अगर हमारे टाइम होता तो कितना अच्छा होता कि चलो एक शॉर्टकट में बन जाता है, जैसे हम गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा वास्ट डेटा देगा हमको, बट एआई पे देते तो लिमिटेड आता है, ये चीजें। तो अब पढ़ाई के लिए भी उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, हम वो कर सकते हैं, कोर्सेस सजेशन के लिए आजकल इतना ज्यादा डाटा फ्री में भी अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमको कोर्स करना है, पैसे उसके डालने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, वहाँ जाके कोर्स करना है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना फ्री रिसोर्सेज भी आज एआई की वजह से इतने ज़्यादा जनरेट हुए हैं, उसका भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और मिसयूज तो उसके है ही,
0: मिसयूज़ फिर उसकी पूरी लिंक लग जाएगी आगे, लेकिन उसका अच्छा यूज़ कैसे करना है ये सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए, वो तो एआई जनरेट नहीं करके देगा। अच्छा, तो उमरान जी, आप जैसे देखा जाए तो आपके पिताजी ने एक बार आपको कहा था कि भाई स्कूल में जा रहा हो तो इधर उधर मत ज्यादा ये कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, तो इतने सब जर्नी देखते हुए फिर आप क्या कहना आता है पिताजी का?
1: अब पिताजी तो जैसे खुश हैं, पहले तो जैसे आप भी बोले कि आप एक पुलिस वाले के ही आप ये है ना, तो जैसे पुलिस वाले का नेचर एकदम कड़क रहता है कि वो घर में भी आएंगे तो एकदम थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहेंगे ये चीज को लेकर, तो जब पिताजी आते थे तब हम टीवी बंद करके भाग जाते थे कि अब पिताजी के सामने टीवी भी नहीं देखना और बुक लेकर बैठ जाओ और बस पढ़ते थे। तो जब मेरा, मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है कि जब मेरा 10th टेंथ हुआ था, टेंथ के एग्जाम में पास आउट किया था, और मैं घूमने के लिए वगैरह जैसे गया था मैं नानी के पास वगैरह, वहाँ सब लोग पूछते थे कितना रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, तो वो मैं बोलता था कि मेरा 90 प्लस आएगा, हमेशा बोलता था मैं 90 प्लस आएगा, सबको बोलता था 90 प्लस। जब ये बात मेरे पापा को पता चली कि ये हमेशा सबको बोलता है 90% आएगा, मेरे मामा ने उनको एक्चुअली बताया कि ये बोल रहा है 90% आएगा, 90 से ज़्यादा आएगा। पापा बोलते नहीं नहीं इसका 90 नहीं आएगा, बोले 70 के आसपास आएगा। उनको ऐसा था कि मतलब ये पढ़ता नहीं है उतना ज़्यादा ये हो, बट जब मेरा 88% आया तो तब उनको समझ में आया, टेंथ में मेरा 88 आया था तब उनको समझ में आया कि यार अरे नहीं मतलब ये है उतना,
0: है
1: मतलब
0: उतना है, अच्छा,
1: जैसे
0: हाँ।
1: ये भी चीज़ों को लेकर है, वो बाहर की चीज़ों को थोड़ा मस्ती वगैरह भी करता है, हाँ। बट जो उसका पढ़ाई को लेकर ध्यान है, तो तब उन्होंने मुझे समझाया था, देख तुझे लगेगा कि तुझे अब चल टेंथ में तो अच्छे मार्क आ गए, आगे तू छोड़ देगा, लेकिन ऐसे भी तू सोचता होगा कि जैसे मैं पुलिस हूँ, आज वो PSI की पोस्ट पे मैं पुलिस हूँ, तो ऐसे सोचता होगा तुझे भी मैं पुलिस भर्ती में लगा दूंगा, ऐसे चलेगा ये हो, बट मैं एक बार तुझे चाय की होटल में काम को लगाऊंगा, लेकिन
0: पुलिस में नहीं भर्ती,
1: पुलिस में नहीं भर्ती,
0: हर एक पुलिस वाला अपने बच्चों को ऐसे मुझे भी वही बोले। अभी हमने वो इसके जगताप पाटिल के बाद इंटरव्यू किया तो उनके पिताजी भी पुलिस में थे, वो भी ऐसे हर एक पिताजी ऐसे कहते हैं।
1: तो मैं बोलता हूँ ना, जो मेरा पिताजी का स्ट्रिक्ट रवैया था वो भी मुझे कहीं ना कहीं काम आता था, मुझे सही में लगता था कि यार अपन पढ़ेंगे नहीं ना तो ये तो छोड़ देंगे अपने को, ये बोलेंगे कि तू तेरा देख।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे आप अलियंस टेक्नोलॉजी जर्मन बेस्ड कंपनी में अभी जॉब कर रहे हो, लेकिन पुणे में जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ है फ्यूचर में प्लान कि चलो जर्मनी भी देख के आएंगे या वहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, 5-6 साल तो इस कंपनी में हो रहे या कुछ कंपनी शिफ्टिंग का ऐसा कुछ है?
1: यस, अभी हमारा ना ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है कंपनी में, है ना, ऑटोमेशन चल रहा है तो उसके प्रोजेक्ट्स में मैं अभी इन्वॉल्व हूँ, दो प्रोजेक्ट्स में, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि जैसे आपको ऑन साइड आना ही पड़ेगा जर्मनी में, और मुझे बहुत सारे लोग मतलब हमारी कंपनी के सीनियर्स ने कहा भी है अगर तुम वहाँ जाओगे और तुमको अगर वहाँ का काम अगर वहाँ पे पसंद आया तो हो सकता है कि वो वहीं पे रुका दे। जैसे हमारे कुछ सीनियर्स मेंबर थे हमारे टीम के 10-12 ईयर का एक्सपीरियंस वाले, वो अभी चले गए वहाँ पे, मूव हो गए। तो जैसे देखा जाए ना IT में इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा जो है ना आगे है इंडिया के लोग देखा जाएगा तो, है ना, तो वो लोग भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं वहाँ पर आने के लिए।
0: तो आपने सोचा है जाने का वहाँ?
1: मेरा भी ऐसे तो कुछ है नहीं कि जाऊंगा ही, क्योंकि
0: नहीं वहाँ का वर्क कल्चर अलग है बोलते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, तो कुछ ऐसा कुछ
1: जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल यहीं पे हूं, क्यों तो एक फ्रेंड सर्कल बोलो, फैमिली बोलो, यस यस यस, मैं तो मानता हूं जितने हमारे धाराशिव उस्मानाबाद वाले हैं ना उन सबको ही एक अपने शहर से बहुत ज्यादा लगाव है, कहीं पे भी जाओ पर वो बोलेंगे कि नहीं हमसे धाराशिव, हमसे उस्मानाबाद ही भारी है।
0: अच्छा अच्छा, तो उमरन जी जैसे कि आपकी पूरी लाइफ की जर्नी रही ऐसा कुछ, तो कुछ म्यूजिक सुनाना कुछ है ऐसा?
1: यस, म्यूजिक भी इंटरेस्ट था पहले, अब उतना ज्यादा नहीं होता है
0: सुनने के लिए, तो कम से कम
1: सुनते हैं, बट आजकल उतने वैसे गाने भी नहीं आ रहे जैसे हम पहले के देखते थे ना,
0: पहले गाने 60-70
1: मैं बोला 20s के गाने भी देखो।
0: अच्छा 20s के गाने, हाँ हाँ, तो कौन से ऐसे गाने जो आपके दिमाग में चल रहे हैं?
1: जैसे मैं बिग फैन ऑफ इमरान हाशमी बोलते हैं ना वो था,
0: अच्छा,
1: तो इमरान हाशमी का हर एक गाना
0: अच्छा,
1: जैसे KK ने बहुत सारे इमरान हाशमी के गाने गाए, वो वाले गाने ऐसा स्पेसिफिकली बोलूंगा तो मैं शायद दूसरे गानों की इंसल्ट होगी, इसलिए मैं बोलूंगा कि जैसे कि बहुत सारे गाने, मोस्टली इमरान हाशमी के गाने।
0: अच्छा, तो इमरान हाशमी का एक गाना है एक बहुत बढ़िया, मुझे भी पसंद है वो, लगाएंगा सरप्राइजली आपको भी लगेगा वो इमरान हाशमी का गाना है एक। तो आप 20 मोस्ट ऑफ द जो इंजीनियर के स्टूडेंट हो 90s लोअर ज़्यादा दिखे मुझे, या 90s के सॉन्ग सुनने के लिए या कुछ ऐसा, और बहुत सारे एलुमिनाई ने तो 3 Idiots के गाने बहुत ज़्यादा उन्होंने सुनाने के लिए कहा था, लेकिन ठीक है आप वो 20s के ज़्यादा करीब हो। तो उमरान जी मैं आपको फिर से एक बार मैं आपको यहाँ से हम हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, और आपके आगे की जर्नी के लिए हम आपको शुभेच्छा देंगे, आपको विशेष देंगे, और आप फिर से एक बार, हाँ हो सकता है आप नहीं जाना चाहते बाहर, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि 1-2 साल बाहर की हवा थोड़ी से रह के आप आइए एक बार फिर से, ऐसा मैं आपको यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँगा, और आप यहाँ पे आके आपके जितने भी थॉट्स है वो शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच, आपने भी हमको इन्वाइट किया और कुछ बातें शेयर की, कुछ हमको भी आपसे सीखने मिला, इसके लिए बहुत बहुत
0: यस थैंक यू। आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज, श्रोते हो रेडिओ तरुण ट्यून करा 90.4 FM वर किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तरुण हे ॲप उपलब्ध आहे. आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तरुण ऐकू शकता. त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानावला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तरुण. आपण https://radio.coe.usmanawala.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तरुण. आपण आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाला लाईक करा, फॉलो करा. तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा. त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 99705000. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तरुण 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज.

0: झुलती गए
1: सजा मना।

0: लगीन झालं गोंधळ झाला. आता एक काम हो उरलं.
1: आता आणि काय उरलं.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले मिले।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपले शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं, आयुष्यामध्ये पुढे जात असताना ते एका अशा यशाच्या टप्प्यावर उभे असतात की त्यांचा हा जो प्रवास असतो तो आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतो. आणि म्हणूनच आपण अशा सर्व प्रेरणादायक व्यक्तित्वांच्या मुलाखती ज्या आहेत ते तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ऐकत असतो. आजही आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे उमरान शेख यांना. ते 2019 मेकॅनिकल या ब्रँचमधून तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील पासआउट आहेत. त्यांचं शालेय शिक्षण छत्रपती हायस्कूल धाराशिव इथेच झालेलं आहे आणि त्यांचं पॉलिटेक्निक पण झालेलं आहे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक धाराशिवमधून. आणि सध्या ते म्हणजे 2020 पासून जवळपास 5-6 वर्ष झाले ते अलियांज टेक्नॉलॉजी ही जर्मन बेस्ड कंपनी आहे त्याच्या पुण्याच्या ब्रँचमध्ये ते कार्यरत आहेत. तेव्हा आपण जाणून घेणार आहोत की त्यांचा हा प्रवास कसा राहिलेला आहे. उमरान भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडियो तेरणा के स्टूडियो में.
2: थैंक यू सर.
1: अच्छा, तो उमरान जी, वैसे तो हमने नाम हमेशा इमरान ऐसा लिया है कभी भी हमारे सामने जितने भी इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन ये उमरान शेख, तो उमरान क्या क्या मतलब होता है वैसे ना?
2: उमरान का नाम है सर, एक हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे उनका नाम भी ये था उमरान.
1: हाँ,
2: तो उसी से प्रेरित होकर मेरे घर वालों ने मेरा नाम उमरान रखा है.
1: अच्छा,
2: उमरान तो हम देखते हैं इमरान जैसे बहुत कॉमन,
1: बहुत ज्यादा
2: कॉमन नाम है. पर जैसे जैसे होता है हर एक का ख्वाहिश की जैसे एक यूनिक नाम होना चाहिए अपने बच्चे का, तो उसी के लिए मेरे घर वालों ने सोचा जैसे इमरान हम सुनते हैं उमरान, ये बहुत डिफरेंट नाम.
1: अच्छा,
2: जैसे हम उमरान के बारे में देखते हैं कि बहुत कम सुना है, और अभी कुछ सालों पहले उमरान मलिक जैसे हमारे बॉलर आए थे हैदराबाद टीम में.
1: अच्छा,
2: वहाँ से भी नाम ज्यादा फेमस हो गया.
1: अच्छा, ये उमरान नाम,
2: उमरान
1: बॉलर का नाम,
2: आईपीएल टीम हैदराबाद. अच्छा, टीम के लिए वो खेलते हैं.
1: अच्छा अच्छा, तो 2019 में आपका इंजीनियरिंग यहाँ से कम्प्लीट हुआ?
2: यस, तेरना कॉलेज से मेरा इंजीनियरिंग.
1: तो अभी लगभग 6 साल हो रहे.
2: यस,
1: तो ये 6 सालों में आप मतलब पहली बार यहाँ पे तेरना के कैंपस में आए? कैसे?
2: नहीं, मैं उसके बाद भी बहुत सारे बार यहाँ पे कैंपस पे विजिट कर रहा हूँ. मैं रेगुलरली माने सर, सर शेख सर, रफीक सर के लिए उनको मिलने के लिए आता हूँ. अभी भी मैं बहुत से बार गाइडेंस के लिए कुछ पूछने के लिए आता हूँ, और हमारे जो फैकल्टी है तैरना वाली वो अभी भी बहुत सारे इसमें हमको सपोर्ट करती हैं.
1: अच्छा अच्छा, तो उमरान जी आप देखिए ना, आप 2019 को आपने तैरना से पास आउट किया था, उसके पहले भी आपका छत्रपति से और पॉलिटेक्निक से ये था. तो आपको मतलब बचपन से ऐसा कुछ था कि आपको इंजीनियरिंग ही कम्प्लीट करना है, ऐसा कुछ ऐसा था?
2: जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा घर वालों को बोलता था कि मुझे पायलट बनना है. पायलट का मेरा बहुत ज्यादा एक ख्वाहिश था कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा. पर जैसे जैसे मैं आगे आया, और जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं बहुत सारे फिल्मों में कि एक व्हाइट कॉलर जॉब, जैसे वो डेस्क पे बैठ के जॉब करते हैं, तो वो देख देख के बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि एक एसी कैबिन में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करना, वो मुझे आसान लगता था, ऐसे समझ में आता था.
1: अच्छा, अच्छा.
2: तो मैं उसी की तरफ मैं जाने के लिए बाद में सोचने लगा कि क्या होगा क्या होगा.
1: अच्छा.
2: तो फिर मैं जब मैंने देखा या मैंने जब उसके बारे में जानकारी ली तो मुझे पता चला जैसे इंजीनियरिंग अगर हम करेंगे तो उस में हमको जॉब लग सकती है, मोस्टली इंजीनियरिंग.
1: अच्छा, लेकिन आपके तो मैकेनिकल ब्रांच हो चुकी है. मैकेनिकल में तो ज्यादा तो लोग वो कंपनी में एक तो असाइनमेंट में या इंजीनियरिंग फिटिंग में ऐसा कुछ तो रहता है. तो
2: यस यस, मैकेनिकल में जब हम देखते थे, एक्चुअली मेरा भाई यहाँ पे सीनियर था तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो जब ड्राइंग शीट्स उतारता था उसके, जो हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंस पार्ट्स के ड्राइंग बनाने होते, तो उस टाइम में शायद 9th या 10th में था होगा, और जब वो शीट्स बनाता था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये तो बहुत अच्छा है कि ये शीट्स बनाते हैं, लैपटॉप पे कुछ डिजाइनिंग करते हैं. तो मेरा वो था कि मैकेनिकल डिजाइन में मुझे ज्यादा अंदर जाना है, इसलिए मैंने मैकेनिकल चुना था उस टाइम.
1: आपने पायलट की भी बात छेड़ दी थी, तो धाराशिव का ही अजहर शेख जो है वो पायलट बन चुका है. मैंने उसका इंटरव्यू किया था आकाशवाणी के लिए.
2: वो हमारा फैमिली फ्रेंड ही है.
1: अच्छा, अच्छा,
2: उसके बारे में भी,
1: उसका भी ड्रीम ऐसे ही था बचपन से, ऐसे ही था कि उसको पायलट बनना था, तो वो पायलट बन भी गया.
2: अच्छा,
1: तो जैसे आपने फिर बचपन से सोचा हुआ था, जैसे आपको एक इंस्पिरेशन भी था आपका भाई यहाँ पे पढ़ा हुआ था वो भी इंजीनियर है, तो जैसे आपने पॉलिटेक्निक को एडमिशन लिया स्कूल से, तो ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था कि मैकेनिकल ही चूज करना है, ऐसा कुछ था?
2: यस, एक्चुअली मेरा जब भाई मैकेनिकल में था तो मैं यही सोच रहा था कि मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब
1: ज्यादा
2: लगे से आगे लेके चलना है। और उसमें क्या था कि जैसे ज्यादा पढ़ाई नहीं कि तुम डिजाइन की तरफ देखो, डिजाइन भी है उसमें, ठीक है पढ़ाई भी है बट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और जब हम देखेंगे मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है कि उसके बच्चे तुमको हर जगह दिखेंगे, जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर भी रहेगा या हर हर फील्ड में मिलेगा। जैसे
1: इंजीनियरिंग तो जुगाड़ू है, इसलिए कौन सा भी इंजीनियर हो
2: कहीं पे भी जाता है।
1: तो ये आपकी जो स्कूल की पढ़ाई हो गई वो छत्रपति स्कूल में हो गई, तो ये कैसे स्कूल की जर्नी कैसे रही है पहले बोलिए।
2: स्कूल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी, जैसे मैं हमारे घर के पास ही वो स्कूल था, इसलिए मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर है वो भी, हाँ तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिट जैसे डाल दिया पहले स्कूल में। तो वहाँ पे मेरा स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था, मतलब मैं शरारती बच्चों में भी था लेकिन पढ़ाई में भी आगे था, ऐसे कभी फेल नहीं हुआ।
1: पुलिस बॉयज बोले तो मैं खुद पुलिस बॉयज हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पुलिस बॉयज बोले थोड़ा सा एग्रेसिव
2: रहते थे, तो शरारतों में भी आगे थे क्लास के, जैसे हम पर हमेशा टॉप में भी रहता था मैं। तो हमारे सर वही बोलते थे कि तेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो छोड़ दे और तू होशियार है, तू पढ़ेगा अच्छा, ऐसे वैसे बोलकर। बट जैसे फ्रेंड रहते ही फ्रेंड को कौन छोड़ सकता है, तो वही फ्रेंड के साथ हंसी मजाक में पढ़ते गए और बहुत अच्छा टेंथ में भी हमारा रिजल्ट आया। तो फिर उस टाइम पे ना जब डिप्लोमा गवर्नमेंट में भी नंबर लगने के लिए टेंथ में आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते थे, जैसे मैकेनिकल में मोस्टली जल्दी नंबर नहीं लगते थे।
1: अच्छा, तो 2019 में आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, उसके
2: पहले तीन साल पहले
1: 2016 में
2: मेरा एडमिशन वहाँ करने की प्रोसेस थी। तो उस टाइम भी मतलब बहुत ज्यादा मेरिट लगता था उसके लिए, तो बट जैसे कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा लग गया उसके अंदर मैकेनिकल में। मैं वही चाह रहा था कि, और उस टाइम मैकेनिकल ब्रांच के लिए ज्यादा कॉम्पिटिशन था। उस टाइम ऐसे नहीं था कि आईटी ब्रांच ऐसी है, किसी को मालूम भी नहीं था, जैसे हम ज्यादा सोचते ना हमारी जगह पे कि आईटी ब्रांच ऐसी है, आईटी में एडमिशन लेना है। तो कंप्यूटर इसमें ब्रांच में कम होते थे पर मैकेनिकल को सब लोग ज्यादा प्रेफर करते थे उस टाइम।
1: कोर ब्रांच है और मैकेनिकल में ऐसा कहा भी जाता है कि उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और स्टेबल जॉब मिलते हैं। आईटी में बहुत ज्यादा वोलेटाइल अप एंड डाउन आते जाते हैं। तो अच्छा, तो ये जैसे टेंथ खत्म हो गया तो ऐसे कोई मतलब दिमाग में नहीं चल रहा था कि अपन 11th 12th करेंगे या उसके बाद में कुछ और अलग फील्ड में जाएंगे, जैसे कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग तो खैर हो गया आपका, लेकिन
2: मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि 11th 12th कर ले उसके बाद भी तू इंजीनियरिंग जा सकता है। बट जितना मैंने सुना था और जितना मैं जैसे रिसर्च कर ही रहा था तो उसमें मुझे समझ आ गया अगर हम डिप्लोमा करके जाएंगे तो हमारा बेस इंजीनियरिंग का पहले ही पक्का हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स भी है वो आगे चल के सेम सब्जेक्ट है बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर हमारा इंजीनियरिंग में अगर बेस हमको अगर हमारा ये स्ट्रेट पाथ है कि हमको इंजीनियरिंग ही करना है तो ये बहुत ईजी स्टेप है कि आप डिप्लोमा करो, डिप्लोमा करके यहाँ आओ, क्योंकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे हम अगर 11th 12th साइंस से करेंगे तो उसमें हमको थोड़ा बायोलॉजी ये वो भी आते हैं, पर अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको ठीक है इंजीनियरिंग ही करना है तो बेस्ट वे यही मैं मानता हूँ कि आप डिप्लोमा करो, वहाँ पे आपके मेनली जो बेसिक जितने कंसेप्ट है वो क्लियर करो और फिर यहाँ इंजीनियरिंग में आओ, तो आपका 50% एडवांटेज आपको मिल जाएगा वहाँ पे मोस्टली इंजीनियरिंग।
1: तो जो जिनको इंजीनियरिंग में करियर करना है तो उनके लिए एक बेटरमेंट है कि अगर आप आईआईटी के और बाकी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आप सीधा पॉलिटेक्निक में आओ। अच्छा, तो मित्रों अपन जो चर्चा करत आहोत श्री उमरान शेख यांच्यासोबत, 2019 मेकॅनिकल ब्रांच मधून तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे पास आउट आहेत। सध्या अलियांज टेक्नॉलॉजी या जर्मन बेस्ड कंपनीमध्ये ते 2020 पासून कार्यरत आहेत। तो आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद, जैसे 2016 में आपकी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गई होगी, तो आपको तो फिर कहीं जॉब के लिए जाना चाहिए था या फिर कुछ ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा था कि कहीं तो पुणे बॉम्बे में जाके वहाँ पे पढ़ना चाहिए या कुछ अलग सिटी का, ऐसा कुछ
2: नहीं? मेरा विजन
1: अट्रैक्शन ऐसा नहीं था कुछ?
2: यस यस, मेरा विजन तो यही क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग तो करनी ही है, कुछ भी हो जाए मुझे इंजीनियरिंग करनी है। उस वजह से मैं जब मेरा डिप्लोमा कम्प्लीट हो गया तो मैं सीधे यहाँ पे एडमिशन का आगे मेरा माइंड।
1: तेरना ही क्यों आपने सोचा, क्योंकि बाहर जाने का नहीं सोचा क्या आपने?
2: एक्चुअली तेरना कॉलेज जब हम देखते हैं ना, तेरना कॉलेज हम हमेशा पहले से ही सुनते आते हैं तेरना कॉलेज बारे में, बहुत एक पहले से चलता हुआ आ रहा है कॉलेज, और तेरना कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में मैंने बहुत सुना है। और जैसे मैंने बताया मेरे और भी यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ये लोग यहाँ पे ही थे, तो मुझे इजीली भी बाहर पुणे में वगैरह मिल रहे थे। बट जब मैंने यहाँ के सर से आके बात की तब उस टाइम हमारे पटेल सर भी थे, पटेल सर ने भी मुझे गाइड किया और शेख सर थे उन्होंने भी मुझे गाइड किया। तो जब मैं यहाँ के आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ के लैब्स देखे,
1: लैब्स तो पूरे मराठवाड़ा में नहीं है,
2: नहीं, यस यस करेक्ट, तो वही मैं देखकर मैं बोला कि, और जब मैंने स्टूडेंट से भी फीडबैक लिया वो भी वही बोले कि प्रैक्टिकल्स को लेकर और जो अपने लेक्चर्स होते हैं वो सब यहाँ पे 100% कवर होता है। और मेन जब हम मैकेनिकल में देखते हैं हमको प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजों को देखना है। और जब हमने देखे तो यहाँ पे हर मशीन अवेलेबल है, हर चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए हर चीज अवेलेबल, और फैकल्टी भी बहुत सीनियर फैकल्टी है सिखाने के लिए हमको। उस सब चीजों को देख कर मैं सोचा कि यहीं पे रह के हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करें।
1: अच्छा अच्छा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 2019 में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए, तो देखिए आपके फीचर 2016 में आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन लिया। तो पहले तो आपके भाई साहब यहाँ पे थे, साथ में आपने छत्रपति स्कूल में पढ़ाई की थी, 50-50 था दोनों तरफ, यानी अच्छे भी और स्टूडेंट में ज्यादा हंसी मजाक भी करने वाले, ऐसा साथ में पॉलिटिकल भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे आने के बाद काफी रिलैक्स होके आए होंगे, चलो आप अपने अपना ही राज है, अपना ही सब कुछ एरिया, ऐसा कुछ हो गया या कुछ पढ़ाई की तरफ ज्यादा मतलब ध्यान देना पड़ा?
2: नहीं, इस टाइम तो हम यही सोचते थे कि चलो अपना कॉलेज, हम इस कॉलेज को हमेशा बोलते अपना कॉलेज है, अपना कॉलेज है, क्यों तो यहाँ का इन्वायरमेंट हम देखेंगे ना, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कॉलेज का, हम देखेंगे ना हर चीज़ ऐसे कुछ नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है, वैसे नहीं, एक नॉर्मल जैसे होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, वैसे ऐसे नहीं है कि हम कभी दो बार नहीं सोचते कि हम रफिक्स अरे अपने सर है उनको कैसे कॉल करें। बहुत से बार होता है अगर हमारे सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो हम सोचते हैं यार पूछूँ उनको या नहीं, बट यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम कभी भी पूछ सकते हैं, राइट। और मैं एडमिशन लेने के टाइम भी मैं यही सुना था कि अपना जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, और जैसे हम देखेंगे ना बहुत सारे कॉलेज अभी शुरू हुए हैं बाहर के, बट जो तेरना कॉलेज है ना बहुत पहले से हम सुनते आते हैं, जहाँ पे जैसे मैं तो यही ये तक सुना कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे
1: स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करने 40 साल के लिए से ये तो होने वाला।
2: और पहले एडमिशन भी ऐसे थे कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिल जाते थे, बहुत से बार सुना है।
1: अच्छा, तो जैसे आपने यहाँ पे 2016 को आपने जर्नी स्टार्ट की इंजीनियरिंग की डिग्री की, तो ये 3 साल कैसे रहे 2019 तक के?
2: 3 साल हमारे बहुत बहुत ही बढ़िया गए, जैसे हम बोलते हैं ना हम सेकंड ईयर में आए फर्स्ट, तो हमारा बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो डिप्लोमा में था हमारी
1: एक साथ
2: सब लोग मोस्टली लोग यहाँ पे आए, और हमारी मतलब क्लास ही ऐसी थी जो सेकंड ईयर डायरेक्ट डिप्लोमा करके आई, तो सब हमारे मोस्टली उसके अंदर फ्रेंड्स भी थे, कुछ बाहर की भी थे, तो अच्छी वाइब, और डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट थे तो हमको मतलब पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर अच्छा था, तो उसकी वजह से भी हमारा बहुत अच्छा, और फैकल्टी जब पढ़ाने आते थे तो उनको भी अच्छा सपोर्ट होता था कि मतलब ये चलो इनका बेस क्लियर है तो इनको हम और एडवांस चीज़ें सिखाएंगे। और जैसे यहाँ पे हमको सेकंड ईयर से ही ना माने सर जब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे वो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस लाते थे, जैसे कि हमको याद है सेकंड ईयर में हमने क्वाड कॉप्टर बोल के आया था, क्वाड कॉप्टर, तो वो उसका कोर्स हमको सर ने सिखाया, हमने खुद मतलब चार चार के स्टूडेंट के बैच रहते थे, वो खुद क्वाड कॉप्टर डिजाइन करके बनाते थे, उसको फ्लाई करते थे यहाँ पे ही। फिर हर साल मतलब सर वगैरह जो है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए लाते थे यहाँ पे, तो उसके अंदर हमको मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, है ना। उसके बाद भी हमको याद है कि जैसे मैकेनिकल के लिए ऑटो कैड बहुत ज़रूरी है, तो ऑटो कैड भी हमारा यहाँ पे ही माने सर ने कंडक्ट करवाया था, बैंगलोर से फैकल्टी आई थी सिखाने के लिए, वो भी 3 डेज का ट्रेनिंग वर्कशॉप चला था, ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी चली बहुत सारी।
1: अच्छा, ये 3 सालों में ये सब जर्नी चलते हुए कुछ आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना जारी था क्या, कि जैसे हमको इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है क्या नहीं, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस या कुछ खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होके कुछ करना करने का सोच रहे?
2: जब कभी मुझे ऐसे लगता था करियर के बारे में मैं तो डायरेक्टली सर को पूछता था कि क्या है, और माने सर हमें हमेशा अश्योरेंस दिलाते थे कि आप बस मन लगाकर पढ़ाई करो, आप जितना मन लगाकर पढ़ाई करोगे जितने अच्छे मार्क्स लाओगे करियर की टेंशन मत लो, वो बोलते थे हम है यहाँ पर बैठे हुए, वो लोग अच्छे अच्छे कंपनीज लाते थे, मैंने खुद यहाँ पर 4-5 से 6 कंपनीज में इंटरव्यू दिए जो माने सर ने यहाँ पे लाए थे, उसके अंदर 3-4 में मैं सेलेक्ट भी हो गया था, ये सब चीज़ें। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को लेके मुझे कभी एक सेकंड थॉट नहीं था मेरे दिल में कि मेरा होगा या नहीं होगा, बस जब भी हम सर को बात करते थे सर वही बोलते थे कि आप उसकी टेंशन मत लो, वो हम पे छोड़ दो, हम हैं बस, आप जो है आप कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है जो सब चीज़ें एक्टिविटीज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही है उन सब में पार्टिसिपेट करो, बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दो और अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो।
1: अच्छा, तो ये 3 सालों के जर्नी में आप जितना सीरियसली बोल रहे हो उतना सीरियसली स्टडी होती थी या कुछ और भी होता था, जैसे स्कूल से चलते आ रहा था बहुत सारा धींगा मस्ती कुछ ऐसा कुछ चलता था?
2: यस वो सब चीजें तो चलती रहती है। अब इंजीनियरिंग बॉयज मतलब थोड़े ऐसे खामोश बैठेंगे। तो हमको क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। और यहाँ पे अपना जो अभी जो अपना ये वाला है तेरना के पास टर्फ, तो उस टाइम टर्फ नहीं था, वो बास्केटबॉल बॉस कोर्ट था और उसके बाजू में अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड था। तो जब कभी हमारा फ्री लेक्चर होता था या समझो कुछ कॉलेज टाइम के बाद वहाँ क्रिकेट प्रैक्टिस होती थी, तो हम रात रात तक वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। और वहाँ पर सब लाइट का वगैरह अरेंजमेंट सब था, तो हम लाइट ये खेलते थे। बट जो मेनली हमारा फोकस था कि अरे प्रैक्टिकल कभी मिस नहीं करना है, या जैसे अटेंडेंस जो है 70% से नीचे नहीं आनी चाहिए, ये सब चीज़ों पर हम भी ध्यान देते थे। और अपना कॉलेज कैंपस भी इतना बड़ा है, वो भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा घूमे हैं पूरा कॉलेज कैंपस।
1: तर मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत आहोत ते उमरान शेख यांच्याशी, 2019 पासआउट आहेत मेकॅनिकल ब्रँचमधून, आणि आता सध्या अलियन्स टेक्नॉलॉजी जर्मन बेस्ड कंपनी आहे त्या ठिकाणी, म्हणजे पुण्यामध्ये 2020 जॉबला आहेत। तो ये अलियन्स टेक्नॉलॉजी में आपने 2020 ज्वाइन किया ना, 2019 को पास आउट आउट, तो डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो गई है, उसके पहले कुछ कोर्सेस या कुछ ऐसा कुछ किया?
2: नहीं, एक्चुअली मैंने कोर्सेस किए थे। बेसिकली मैंने फर्स्ट जैसे मुझे मैं यहाँ से जॉब को लग गया था, तो बाद में कुछ वजह से मतलब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वहाँ से ड्रॉप करके जॉब छोड़कर वापस आ गया। वापस आने के बाद मुझे ऐसे पता लगा कि मतलब आईटीज़ में भी जॉब बहुत ज़्यादा बूम हो रहे हैं उस टाइम पे, तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। तो तब मैंने जब देखना उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे सब में अच्छी फील्ड ये लगी साइबर सिक्योरिटी वाली। जैसे
1: आप साइबर सिक्योरिटी में
2: हूँ मैं, तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसके अंदर मैं ज़्यादा रिसर्च करने लगा। क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर मेन कंसर्न रहता है कंपनी का, क्यों तो लाखों करोड़ों का उनका टर्नओवर पूरा जो बिजनेस है, वो उनको अगर उनका डाटा प्राइवेट रखना है तो मेनली है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी वो निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए सोचा। तो फर्स्ट स्टेप मैंने देखा कि उसके लिए हमको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, तो मैंने CCNA कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि अब ये कोर्स तो सभी लोग करते हैं, हमको बस उससे बेसिक पे नहीं हटना है, तो थोड़ा एडवांस भी जाएंगे उसके आगे। तो मैंने 3 मंथ CCNA किया, 3 मंथ CCSA किया, और CCSA का जो एग्जाम होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है। तब मेरा 97th वाला रैंक आया पूरा ग्लोबल में।
1: अच्छा।
2: तो बहुत सारी कंपनीज का भी मुझे अप्रोच आने लगा, और मैं बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करने भी लगा। उस टाइम जो जैसे CCNA सिस्को का सर्टिफिकेशन होता है, और CCSA चेक पॉइंट का सर्टिफिकेशन होता है, मेरे पास दोनों सर्टिफिकेशन और उसके लाइसेंस आ गए थे। तो उस वजह से फिर मैंने जाना सोचा। फिर जब मैंने रिसर्च किया तो कंपनीज का वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जब मैंने किया तो अलियंस मुझे बेटर कंपनी लगी बाकी कंपनियों के हिसाब से, तो मैं फिर वहाँ पे ज्वाइन हो गया।
1: अच्छा, तो ये जो आपने अलियंस टेक्नोलॉजी में आपने जो भी ज्वाइनिंग किया, तो ये साइबर सिक्योरिटी यानी आपका मतलब जॉब प्रोफाइल क्या रहता है? आप काम क्या करते हो? जैसे कि आप, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, तो आप काम क्या करते हो?
2: अच्छा, हमारा मेनली काम है जैसे हमारे बहुत सारे डाटा सेंटर्स है, अराउंड 20+ कंट्रीज में हमारे डाटा सेंटर अवेलेबल है। तो अलियंस मेनली एक ग्रुप है, अलियंस सर्विसेज, एंड उनका एक ये है अलियंस टेक्नोलॉजी। तो अलियंस टेक्नोलॉजी मेनली क्या करती है कि जितने सारे उनके जो बिजनेसेस है उनका डाटा प्राइवेसी, फिर ऐप डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने होते हैं वो मैनेज करना होता है। तो उसमें हमारा जो है, अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ सीनियर एनालिस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं नेटवर्किंग में जितने भी हमारे सर्वर्स है उसका एक्सेस हमारे पास होता है। ओके, और उन सर्वर्स पे मोस्टली डाटा रहता है जो डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स का भी डाटा है, हमारे कंपनीज का भी डाटा है। तो उनको एक्सेस कौन कर सके? जैसे समझो एक पर्सन है, उसको वो डाटा एक्सेस करना है, पर वो ऑथोराइज है या नहीं है वो देखना है। तो एक सर्वर और एक यूजर के बीच में एक होता है फायरवॉल, तो वो फायरवॉल हम है। हम उसको अब किसको अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है ये हमारे ऊपर है। अच्छा। जैसे अगर हम देखें तो जब कोई यूजर होता है वो हमारे पास एक FCC रहता है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन चेंज बोल के एक हमारे पास आता है। उसके अंदर जैसे यूजर का IP एड्रेस रहेगा, वो यूजुअली कंप्यूटर से ही कर रहा है एक्सेस, तो उसका IP एड्रेस है, तो उसको अलाउ करना है फायरवॉल के आगे या डिनाई करना है वो डाटा जो है, एक स्पेसिफिक डाटा वो यूजर मांग रहा है, तो वो हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन, ये मेनली हमारा उसमें काम है।
1: अच्छा अच्छा, तो ये जो आजकल UPI के जरिए जो पेमेंट होता है उसके अंदर भी बहुत सारा ऐसा फ्रॉड होता है, तो वो शायद आपका ये फील्ड नहीं होगा, लेकिन उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो कैसे होता है और उसकी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा?
2: जब हम देखते हैं UPI में मेनली फ्रॉड हम देखेंगे ना, तो मेन फ्रॉड होता है जब हम किसी अनऑथराइज लिंक्स पर क्लिक करते हैं, या हमारे
1: जो व्हाट्सएप पे
2: लिंक्स, या बोलो आपको प्राइवेट SMS में भी आएगी, कुछ ऐसे आएगी कि जैसे आपको इतना कैशबैक मिला है क्लेम करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो जब हम वो लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन है मेनली मैक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस होता है वो मेनली उनके पास चला जाता है और तब उनके पास मोस्टली जो हमने ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या क्या मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री में हमने जब एक पिन हमारा इंटर किया हुआ होता है या कहीं पे हमारा मेल आईडी एंड पासवर्ड डाला हुआ होता है वो ब्राउजिंग कैचे में वगैरह स्टोर होता है तो उस वजह से वो जो स्कैमर होते हैं उसका एडवांटेज लेते हैं।
1: अच्छा तो उमरान जी आप देखिए आपने तो ये साइबर सिक्योरिटी और उसका काफ़ी ईजी में बता दिया है कि ये यूपीआई फ्रॉड भी कैसे होता है और आपका जॉब प्रोफाइल भी कैसा है लेकिन आप तो मैकेनिकल में थे वो डिज़ाइन में थे या ऐसा है वैसा है ये सब आप बचपन से देख रहे थे आपके भाई साहब का भी देख रहे थे ये सब कुछ होते इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे मैकेनिकल से ऐसा पूरा साइबर सिक्योरिटी में या जैसे आप बचपन से सोच रहे थे कि मुझे एक टेबल पे एसी में बैठ के एक चैम्बर में बैठ के काम करना है तो ऐसा कुछ
2: यस जब हम देखते हैं तो मैं डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ये था मुझे डिज़ाइन में जॉब करना है डिज़ाइन में जॉब क्यों तो डिज़ाइन में जॉब ऐसा है कि टेबल पर बैठ कर एसी के अंदर काम करना है ऐसा बट जब मेरा ये हो गया ऑटोकैड भी जब मैंने कॉलेज से किया था जब मैं डिज़ाइन में जॉब देख रहा था तो उस टाइम उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे थे डिज़ाइन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि डिज़ाइन की कोई कंपनी मिल जाए डिज़ाइन की कोई कंपनी मिल जाए बट मुझे ऐसे कुछ उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिली डिज़ाइन में बाकी मुझे प्रोडक्शन में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी पर जो मैं सोच रहा था मेरा विजन कि अच्छा अपने को ये चीज़ चाहिए अच्छा अपने को ये चीज़ आपने करना है और हम ये भी देखते हैं कि मतलब उस जॉब करते टाइम अपन खुश रहना मतलब मेरा मेंटली मैं वहाँ पे स्टेबल रहूँ है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब काम कर रहा हूँ मैं बट मुझे ये काम पसंद नहीं है ना तो उसके वजह से मैंने जो क्वालिटी वाला जॉब था मेरा छोड़ दिया और फिर जब मैं देख रहा था डिज़ाइन में ठीक है जॉब नहीं लग रही तो फिर मैं सेकंड जैसे मैं जब रिसर्च करा मैं जब पूछा बहुत सारे लोगों को तो मुझे समझ आया कि आईटी में भी ऐसे जॉब होते हैं जब हम पुणे वगैरह घूमने जाते थे तो हम आईटी पार्क जब देखते थे तो अरे इतनी बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग है और कितना मजा होता होगा और इम्प्लॉय ऐसे आ रहे हैं एकदम वर्क एनवायरमेंट वहाँ का जब देखे हम तो अच्छा लगा तो मैं सोचता था कि यार ऐसे कंपनी में जॉब लगना चाहिए होना चाहिए ये कितना सही है ऐसे
1: अच्छा तो इसलिए आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा आपका हो गया लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर सकते हैं जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट है ये सब कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं
2: जब मैं करने का ट्राई कर रहा था मेरे माइंड में सेकंड थॉट था यही कि अरे मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ मैं जब इंटरव्यू को जाऊंगा तो वो लोग पूछेंगे मुझे कि तुम मैकेनिकल से ऐसे क्यों आए अच्छा बट उसमें ये चीज़ है अगर आपके पास उतना नॉलेज है कि समझो 5 कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू के लिए और 5 में आप बेस्ट हो कि आपको अच्छा उतना नॉलेज है तो कंपनी वाले आपको क्यों नहीं लेंगे अच्छा क्योंकि वो चारों से ज्यादा अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज का तो आपको बैकग्राउंड कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए हो आपने क्या किया है अगर आप आपका नॉलेज इतना एक्सप्रेस कर रहे हो उनको कंपनीज को क्या चाहिए उनको अपने से बस प्रॉफिट निकालना है राइट उनका काम होना चाहिए यही चीज मेनली उनके लिए मैटर करती है अगर एक चीज एक बंदा कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आया है और वही काम कर रहा है और एक मैकेनिकल करके आया और वही काम कर रहा है और उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो अब बस यही है कि कंपनी वाले बोलेंगे कि ठीक है ये भी वही काम कर रहा है और अच्छा कर रहा है तो इसको क्यों नहीं हम प्रेफर करें आज तक मेरे 5-6 साल के करियर में ऐसे कभी मुझे किसी ने पूछा नहीं कि तुम मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो कंपनी में क्यों तो बस वो लोग वही देखते हैं कि काम अच्छा है काम कर रहे हैं
1: अच्छा। तो जैसे आपने 2019 में पास आउट किया था 2020 में अलायंस टेक्नोलॉजी में यानी आईटी के तरफ आप गए तो ऐसा कुछ आपको दिमाग में लगता है कि अरे शायद मैं 2016 से लेकर 2019 के बीच में अगर कुछ ऐसा कर लेता था कि ज़्यादा कोर्स है आईसी के अंदर तो हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल हो सकती थी
2: यस वो तो बात सही है अगर हम जितना हर चीज़ पे नॉलेज लेंगे और जितने जल्दी करेंगे जैसे अगर हमारा गोल सेट हो गया ये करना है उसके अंदर नॉलेज लेंगे तो उसका डेफिनेटली हमको आगे फायदा दिखता है बट मेरे जब तक मैं जॉब मतलब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया तो उतना मैं जॉब के बारे में मतलब ज़्यादा ये नहीं था मैं सोचता था कि चलो माने सर ने हमें अश्योरेंस दिया है कि जॉब का करेंगे
1: अच्छा, तो
2: जहाँ होगा बट मैं माने सर को यही बोलता था कि हमें डिज़ाइन में करना है और उस हिसाब से माने सर जैसे बहुत सारे जैसे हमारे क्लास के लोग थे वो वही बोलते थे कि डिज़ाइन में ही करना है और माने सर ने उस हिसाब से फिर जैसे मैंने बोला ऑटो कैट की एक फैकल्टी बहुत अच्छी आई थी बैंगलोर उस हिसाब से हमने कोर्सेज भी किए बट जो वो पीरियड था वो जैसे होता है ना हर चीज़ का कि उस टाइम डिज़ाइन में उतने वैकेंसी नहीं मिल रहे थे हमको तो फिर हमने ये सोचा कि फिर ठीक है बाबा चलो दूसरा भी हम देखेंगे
1: अच्छा तो जैसे आपने ये 2019 से लेके आप 2026 ये 4-5 सालों का ये है लेकिन हम देखा जाए तो सोशल मीडिया के भी बूम लगभग 2014-15-16 के बाद ही स्टार्ट हो गया था जैसे कि व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा इसका सब चल रहा था तो स्मार्टफोन तो आप भी यूज़ करते होंगे, तो आपको कितना इसका यूज़ कितना लगा, मिसयूज़ कितना किया, डिस्ट्रक्ट कितना हो गए, क्या क्या क्या हो गए सोशल मीडिया को लेके या मोबाइल को लेके?
2: सोशल मीडिया जब हम देखेंगे तो वो फ़ायदेमंद भी उतना है और नुकसान जैसे बोलते हैं उतना ही है। अब हमारे टाइम पे रील्स नहीं थी मेनली, अब अच्छा। आपके ज़माने में रील्स आ दिए, अच्छा, रील्स आप एक ओपन करो और स्क्रॉल करते बैठो घंटों कब चले जाएंगे पता नहीं। पर उस टाइम उतना रील्स का वगैरह नहीं था समझो, तो हम यूज़ करते थे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक उस टाइम ज़्यादा पॉपुलर था और फिर इंस्टाग्राम आया था लास्ट में अगर हम देखेंगे 16, 17, 18 के टाइम इंस्टाग्राम। तो बट उसमें उस टाइम ऐसे ये नहीं था बस फोटोज़ देखो ये करो, उतना टाइम पास ज़्यादा नहीं होता उन चीज़ों को लेकर। और जैसे पढ़ाई तो है हम रेगुलर, तो कोई मतलब रोज नहीं पढ़ता है ना, ऐसे माइंड रिफ्रेश के लिए हम तो देखते थे हर चीज करते थे। बट जब हमको इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के पहले ना पीएल्स मिलते थे, 10 दिन मिलेंगे 15 दिन, तो उस टाइम का यूटिलाइज हम ज्यादा करते थे कि मतलब जैसे 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन आ गए, 2-2 दिन आ गए, उस हिसाब से अगर स्टडी करेंगे हम बराबर, तो वो सब सही चल रहा था उस टाइम।
1: अच्छा,
2: और इतना डिस्ट्रैक्शन समझो जैसे मोबाइल का बोले
1: आज जितना है उतना नहीं था
2: उस टाइम।
1: अच्छा, तो आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जैसे आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, और चाहे वो कंपनी का साइबर सिक्योरिटी का क्यों नहीं हो, आपका प्रोफाइल भी कुछ अलग हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आज जितना भी हमको देखने मिलता है, एआई का है, मेटावर्स का है, एआई के जितने भी आजकल ऐप्स आ रहे हैं उसके अंदर अपनी फोटो डालो, कुछ अलग करो और उसके मिसयूज ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के फोटो के समझो, तो ऐसा कुछ होता है, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? आप इसको रोक तो नहीं सकते हम, क्योंकि इसका जो बोलते हैं इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इससे हम बच कैसे सकते, इसको ले कैसे सकते, सोच कैसे सकते इसके बारे में ये बोले?
2: जैसे सही बोला आपने, जैसे आजकल सोशल मीडिया का इतना क्रेज बढ़ गया है और मेनली लेके फोटोज को लेके है ना, आज हम देख रहे हैं एआई पे आप एक फोटो अपलोड करो उसको प्रॉम्प्ट दो कि मुझे ये फोटो ऐसे चाहिए, तो वो बनाकर दे देगा। हाँ। है ना, जितना और वो जो सब चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पे स्टोर भी हो रही होंगी। हाँ, जितना हमको
1: जैसे आप सर्वर पे काम करते हैं,
2: उनके सर्वर पे डेफिनेटली स्टोर होगी। अब यही देखो कि अगर एक साल बाद भी हम अगर जैसे चैट जीपीटी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे जाके तो वो फोटो हमारी वहीं दिखाता है, चाहे हमारी फोटो फोन से डिलीट हो या कहीं से हो, है ना, तो वो उनके सर्वर पे तो स्टोर है। तो इन चीजों का जैसे सोशल मीडिया का बोलो या एआई का बोलो, इसका हम ज्यादा फायदा जिससे उठाते हैं हमको वो करना चाहिए, है ना। जैसे उसका ठीक है, हमको फोटो एडिट करना है तो ठीक है आप करो, बट एक लिमिट तक करो उसका, ज्यादा हर चीज का अगर हम बोलेंगे ना तो
1: एक्स्ट्रा ज्यादा करेंगे,
2: यस एक्स्ट्रा ज्यादा करेंगे तो वो खराब है।
1: अच्छा,
2: और अगर उसका लिमिट में कुछ इस्तेमाल करेंगे ये, तो आजकल में ही मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी कि हमारे टाइम अगर चैट जीपीटी होता तो कितना अच्छा होता, एआई होता तो कितना अच्छा, हम पढ़ाई के लिए बोलो, जैसे आज हम कुछ भी डालते हैं सर्च करते हैं, हमारे काम के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आती है, अगर हमारे टाइम होता तो कितना अच्छा होता कि चलो एक शॉर्टकट में बन जाता है, जैसे हम गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा वास्ट डेटा देगा हमको, बट एआई पे देते तो लिमिटेड आता है, ये चीजें। तो अब पढ़ाई के लिए भी उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, हम वो कर सकते हैं, कोर्सेस सजेशन के लिए आजकल इतना ज्यादा डाटा फ्री में भी अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमको कोर्स करना है, पैसे उसके डालने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, वहाँ जाके कोर्स करना है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना फ्री रिसोर्सेज भी आज एआई की वजह से इतने ज़्यादा जनरेट हुए हैं, उसका भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा,
2: और मिसयूज तो उसके है ही,
1: मिसयूज़ फिर उसकी पूरी लिंक लग जाएगी आगे, लेकिन उसका अच्छा यूज़ कैसे करना है ये सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए, वो तो एआई जनरेट नहीं करके देगा। अच्छा, तो उमरान जी आप जैसे देखा जाए तो आपके पिताजी ने एक बार आपको कहा था कि भाई स्कूल में जा रहा है तो इधर उधर मत ज्यादा ये कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, तो इतने सब जर्नी देखते हुए फिर आप क्या कहना आता है पिताजी का?
2: अब पिताजी तो जैसे खुश हैं, पहले तो जैसे आप भी बोले कि आप एक पुलिस वाले के ही आप ये है ना, तो जैसे पुलिस वाले का नेचर एकदम कड़क रहता है कि वो घर में भी आएंगे तो एकदम थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहेंगे ये चीज को लेकर, तो जब पिताजी आते थे तब हम टीवी बंद करके भाग जाते थे कि अब पिताजी के सामने टीवी भी नहीं देखना और बुक लेकर बैठ जाओ और बस पढ़ते थे। तो जब मेरा, मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है कि जब मेरा टेंथ हुआ था, टेंथ के एग्जाम में पास आउट किया था और मैं घूमने के लिए वगैरह जैसे गया था मैं नानी के पास वगैरह, वहाँ सब लोग पूछते थे कितना रिजल्ट आएगा, तो वो मैं बोलता था कि मेरा 90+ आएगा, हमेशा बोलता था मैं 90+ आएगा, सबको बोलता था 90+। जब ये बात मेरे पापा को पता चली कि ये हमेशा सबको बोलता है 90% आएगा, मेरे मामा ने उनको एक्चुअली बताया कि ये बोल रहा है 90% आएगा, 90 से ज़्यादा आएगा, पापा बोलते नहीं नहीं इसका 90 नहीं आएगा, बोले 70 के आसपास आएगा, उनको ऐसा था कि मतलब ये पढ़ता नहीं है उतना ज़्यादा ये हो, बट जब मेरा 88% आया तो तब उनको समझ में आया, टेंथ में मेरा 88 आया था तब उनको समझ में आया कि यार अरे नहीं मतलब ये है उतना,
1: है
2: मतलब
1: उतना है, अच्छा,
2: जैसे
1: हाँ।
2: ये भी चीज़ों को लेकर है वो बाहर की चीज़ों को थोड़ा मस्ती वगैरह भी करता है हाँ। बट जो उसका पढ़ाई को लेकर ध्यान है तो तब उन्होंने मुझे समझाया था, देख तुझे लगेगा कि तुझे अब चल टेंथ में तो अच्छे मार्क आ गए, आगे तू छोड़ देगा, लेकिन ऐसे भी तू सोचता होगा कि जैसे मैं पुलिस हूँ आज वो PSI की पोस्ट पे मैं पुलिस हूँ तो ऐसे सोचता होगा तुझे भी मैं पुलिस भर्ती में लगा दूंगा, ऐसे चलेगा ये हो, बट मैं एक बार तुझे चाय की होटल में काम को लगाऊंगा लेकिन
1: पुलिस में नहीं भर्ती। पुलिस वाला अपने बच्चों को ऐसे मुझे भी वही बोले, अभी हमने वो इसके जगताप पाटिल के बाद इंटरव्यू किया तो उनके पिताजी पुलिस में थे, वो भी ऐसे हर एक पिताजी ऐसे कहते हैं।
2: तो मैं बोलता हूँ ना, जो मेरा पिताजी का स्ट्रिक्ट रवैया था वो भी मुझे कहीं ना कहीं काम आता था, मुझे सही में लगता था कि यार अपन पढ़ेंगे नहीं ना तो ये तो छोड़ देंगे अपने को, ये बोलेंगे कि तू तेरा देख।
1: अच्छा अच्छा, तो जैसे आप अलियांस टेक्नोलॉजी जर्मन बेस्ड कंपनी में अभी जॉब कर रहे हो लेकिन पुणे में जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ है फ्यूचर में प्लान कि चलो जर्मनी भी देख के आएंगे या वहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, 5-6 साल तो इस कंपनी में हो रहे हैं या कुछ कंपनी शिफ्टिंग का ऐसा कुछ है?
2: यस, अभी हमारा ना ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है कंपनीज में, है ना, ऑटोमेशन चल रहा है तो उसके प्रोजेक्ट्स में मैं अभी इन्वॉल्व हूँ, 2 प्रोजेक्ट्स में, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि जैसे आपको ऑन साइड आना ही पड़ेगा जर्मनी में, और मुझे बहुत सारे लोग मतलब हमारे कंपनीज के सीनियर्स ने कहा भी है अगर तुम वहाँ जाओगे और तुमको अगर वहाँ का काम अगर वहाँ पे पसंद आया तो हो सकता है कि वो वहीं पे रुका दे, जैसे हमारे कुछ सीनियर्स मेंबर थे हमारे टीम के 10 ईयर 12 ईयर का एक्सपीरियंस वाले, वो अभी चले गए वहाँ पे, मूव हो गए हैं। तो जैसे देखा जाए ना IT में इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा जो है ना आगे है, इंडिया के लोग देखा जाएगा तो है ना, तो वो लोग भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं वहाँ पर आने के लिए।
1: तो आपने सोचा है जाने का वहाँ?
2: मेरा भी ऐसे तो कुछ है नहीं कि जाऊंगा ही, क्योंकि
1: नहीं वहाँ का वर्क कल्चर अलग है बोलते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, तो कुछ ऐसा कुछ
2: जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल यहीं पे हूं, क्यों तो एक फ्रेंड सर्कल बोलो फैमिली बोलो, यस यस यस, मैं तो मानता हूँ जितने हमारे धाराशिव उस्मानाबाद वाले हैं ना उन सबको एक अपने शहर से बहुत ज्यादा लगाव है, कहीं पे भी जाओ पर वो बोलेंगे कि नहीं हमसे धाराशिव हमसे उस्मानाबाद ही भारी है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो उमरान जी जैसे कि आपकी पूरी लाइफ की जर्नी रही ऐसा कुछ, तो कुछ म्यूजिक सुनाना कुछ है ऐसा?
2: यस, म्यूजिक भी इंटरेस्ट था पहले, अब उतना ज्यादा नहीं होता है
1: सुनने के लिए, तो कम से कम
2: सुनते हैं बट आजकल उतने वैसे गाने भी नहीं आ रहे जैसे हम पहले के देखते थे ना,
1: पहले गाने 60s 70s
2: नहीं मैं बोला 20s के गाने भी देखो।
1: अच्छा 20s के गाने, हाँ हाँ, तो कौन से ऐसे गाने जो आपके दिमाग में चल रहे हैं?
2: जैसे मैं बिग फैन ऑफ इमरान हाशमी बोलते हैं ना वो था, तो इमरान हाशमी का हर एक गाना फिर जैसे KK ने बहुत सारे इमरान हाशमी के गाने गाए, वो वाले गाने ऐसा स्पेसिफिकली बोलूंगा तो मैं शायद दूसरे गानों की इंसल्ट होगी, इसलिए मैं बोलूंगा कि जैसे कि बहुत सारे गाने मोस्टली इमरान हाशमी के गाने।
1: अच्छा, तो इमरान हाशमी का एक गाना है एक बहुत बढ़िया, मुझे भी पसंद है, वो लगाएंगे सरप्राइजली, आपको भी लगेगा, वो इमरान हाशमी का गाना है एक। तो आप 20 मोस्ट ऑफ द जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो 90s लोअर ज़्यादा दिखे मुझे, या 90s के सॉन्ग सुनने के लिए या कुछ ऐसा, और बहुत सारे एल्यूमिनियम तो 3 इडियट्स के गाने बहुत ज़्यादा उन्होंने सुनाने के लिए कहा था, लेकिन ठीक है आप वो 20s के ज़्यादा करीब हो। तो उमरान जी मैं आपको फिर से एक बार मैं आपको यहाँ से हम हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और आपके आगे की जर्नी के लिए हम आपको शुभेच्छा देंगे, आपको विशेष देंगे, और आप फिर से एक बार हाँ हो सकता है आप नहीं जाना चाहते बाहर, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि 1-2 साल बाहर की हवा थोड़ी से रह के आप आइए एक बार फिर से, ऐसा मैं आपको यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँगा, और आप यहाँ पे आके आपके जितने भी थॉट्स है वो शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच, आपने भी हमको इन्वाइट किया और कुछ बातें शेयर की, कुछ हमको भी आपसे सीखने मिला, इसके लिए बहुत बहुत
1: यस थैंक यू। आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज, श्रोते रेडिओ तेरणा ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेरणा हे ॲप उपलब्ध आहे, आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेरणा ऐकू शकता, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानावला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेरणा, आपण http://radio.coeusmanawa.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेरणा, आपण आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाला लाईक करा फॉलो करा, तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 99705900 ऐकत रहा आनंदी रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर आकर जाकर है।

0: रहते हो
1: सच।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।